0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: casa.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
3: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: Jaane tamanna, jaane ada. Jahan mile aapko tafri,
2: jahan mile aapko malumat.
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

0: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ी एक आवाज़, रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।
1: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

0: खुशी बिल्कुल लगा सुंग सरोवर प्रोग्राम से कालरों से बना रहूं दी और फिर सेल मामा बने और सारा सिक्किम दी गना मैसेजेस हां रोली और ये कहना छे रकीब फटक जल चुकना वचे गम दे जमाश तो दा बलशे अल्लाह दे मलसा नूर दे नमाज बरोमा वहां जबरदस्त जो जहान मनोना शुक्रिया वचे नाम दे सपना गोल पालो से की बन नंदना वचे भाई कैसे हो
1: सरगुतो भी नी बुलाई सुंदे से विस्तर गे तो
0: हां जी बिल्कुल मसल साइड रेहान भाई सिक्किम दे गना बिल्कुल सारा यानी दे सबो नन सुंदन न जिमारो सबो 12 बजे इंशाल्लाह सारा प्रोग्राम रेहान भाई सिक्किम दे गना आगे प्रोग्राम इधर सारा साइड रोटी रे जुता मन शुक्रिया यो जहान न सपना गुल फादर की बाणी ना वजह है में दिखे से शो ला जवाब है मैसेज शामिल करो मुझे साइलेंट लिसनर हो रे जुता मन साइलेंट लिसनर दादा अंदर तरीके सिक्किम जिन्ना दे मैसेज दा पा चार दे पानी कुल ना होते मैसेज ना दे कड़ाई।

खुशखबरी, खुशखबरी, हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हुजीफा कंपनी शिफा तिल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवा थोरो निशान वाला हुजीफा कंपनी शिफा तिल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुरजीगी نو اغا سڑای چی سو رج شفا تل پا پل سر بانے مالش کی نو دادا پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی شفا تل وشتان غرزول بندوی وختان گن او اجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زننا مردنا دوارو دا پارا برابر پیدا مند مزید معلوماتو دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 031-397-3736

निबिया वेलकम वेलकम वेलकम और कलाई जनाब शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तुसे उरुवाई का नाम।

शवाली हाँ जगी मादर टेलीफोन का भी शवाली डेरा डेरा मनन हाँ डेरा शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जी शेरदराजा आ शेरदराजा पाराम शका नाम

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

दुआ करके वो मान जाएगा खुदा खुदा करके। ए मुझको आखिरी मंजिल पर छोड़ने वाले कहा गए हो मोहब्बत की इब्तिदा करके, मेरे नसीब में नहीं वो शख्स, मेरे नसीब में नहीं वो शख्स तो नहीं, मगर मैं देख अच्छा मैं देख लेता हूँ एक बार दुआ करके। सेम वजीर यू जहान मना, थैंक यू सो वेरी मच अदर मैसेज का वालों। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम स्वीट बेजानी, दिस इज मी वन एंड ओनली यूर फैन क्यूटर शिखान वाचिवा। आप जी जनाब जी के हालो का वेरी वेरी वेलकम एंड इस्तकबाल बहुत खुशी और अदब के साथ हमारे गुलगुल एंड बुलबुल मोहतरम एंड खुसूसी कदरदान एंड नजवल शाइस्ता एंड हिस्ता डायमंड एंड गुल गुलाब एंड चंबिल की तरह मेरे प्यारे से अनमोल लवली एंड किशमिश वी आई पी स्वीट भाई जान को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, थैंक यू सो वेरी मच ट्यूटर शिहानी स्वीट सिस्टर जानी, थैंक यू सो वेरी मच मैसेज कवल इज्जत रो कवल इज्जत मन से कदर मन से। नेक्स्ट वाइज मी ट्यूटर शिहान स्वीट भाई जानी, ये दुनिया मतलब की दुनिया है छह मुलाकात करने वाला हर शख्स खास नहीं होता, बिल्कुल सही कीमती खबर है। मैसेज का बोलिए जहान मनाते हैं कि सोरे मच ओके जी। नेक्स्ट मैसेज छा खड़ा था।

0: जाएंगे, ये दिल अपना नहीं ये दिल तेरा है।
1: ये दिल तेरा है,
0: ये दिल अपना नहीं ये दिल तेरा है, तेरी पनाहों में दिल का बसेरा है। कर लो नजर तुम, कर लो नजर तुम तो हम निखर जाएंगे, तेरे बगैर जाना हम तो मर जाएंगे। इश्क मोहब्बत में ऐसा भी होता है, इश्क मोहब्बत में ऐसा भी होता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। कर लो मोहब्बत तो हम तो सवर जाएंगे,
1: कर लो मोहब्बत
0: तो हम तो सवर जाएंगे, तेरे बगैर जाना हम तो मर जाएंगे।
1: हाय हाय।
0: और तीर निगाहों से ऐसे जो चलते हैं, तीर निगाहों से ऐसे जो चलते हैं, आशिक मजनू फिर ऐसे मचलते हैं।
1: हाय हाय हाय हाय हदुना।
0: तीर निगाहों से ऐसे जो चलते हैं, आशिक मजनू फिर ऐसे मचलते हैं, तेरी हातिर तो खुद से गुजर जाएंगे, तेरे बगैर जाना हम तो मर जाएंगे। और राज़े दिल तुम हो राज़े वफा हम है, राज़े दिल तुम हो राज़े वफा हम है, तुम जो पास मेरे तो फिर क्या गम है। राज़े दिल तुम हो राज़े वफा हम है, तुम जो पास मेरे तो फिर क्या गम है, एक इशारे पर दिल में उतर जाएंगे, तेरे बगैर जाना हम तो मर जाएंगे। ऐसे न जाना तुम हम तो बिखर जाएंगे, तेरे बगैर जाना हम तो मर जाएंगे।